वो करीब कर दिया जाएगा। जहन्नम जो है दूर होगी, जहन्नम आग है, जन्नत जो है करीब है, करीब बिल्कुल करीब। इसीलिए कहा गया जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। क्या माने माँ के कदमों के नीचे? यानी अगर तुम जन्नत तलाश करना है तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहलू में है। अब जैसे ही माँ बुज़ुर्ग हो रही है, परेशानी है कि माँ को घर में रखें या ना रखें। वो कहा जाता है कि 10 बच्चों को माँ पाल लेती है मगर एक माँ को 10 बच्चे पालते नहीं हैं। ये क्या है? ये जानते नहीं हैं कि कितनी बड़ी अजमत है एक घर में बुज़ुर्ग का होना। एक हदीस तरबियत के औलाद के सिलसिले में हमने बयान की थी, एक सलावत पढ़ी हूँ। बहुत खूबसूरत हदीस है, वो ये है कि अल अशायख फ़ी उसरते ही कन नबी फ़ी उम्मते ही। एक बुज़ुर्ग का एक ख़ानदान में रहना ऐसे है एक जैसे नबी का एक उम्मत में रहना। यानी इतनी अजमत एक घर में एक बुज़ुर्ग का होना। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर माँ कोई बुज़ुर्ग घर में रह रही है तो बच्चों को परवरिश के लिए आधे मराहल हल हो जाएंगे। उठने बैठने, तरबियत करने, तमाम चीज़ें बच्चे जो हैं उस बुज़ुर्ग से सीखते चले जाएंगे। मगर इसको हमने आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में आकर के इसको ज़रा सा इग्नोर करते चले जा रहे हैं, इस रहमत से दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए रिवायत में है कि जो माँ बाप को एक मोहब्बत की निगाह से देखे उस पर एक निगाह पर हज मकबूल उम्र मकबूल का सवाब है। यह हज मकबूल उम्र मकबूल हमने कई मरतबा कहा है, हमने हज किया है, उम्रा किया है, कबूल है या नहीं हमें मालूम नहीं है। दुआ करने परवरदिगार रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मालिक हमने ये कर दिया या अमल, तू कबूल कर ले। लेकिन यहाँ पर कबूल की भीख नहीं है, तुम अगर ऐसा करोगे तो मकबूल हज है, मकबूल उम्रा है। एक माँ बाप से एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छी गुफ्तगु, अच्छा सलूक माँ बाप के साथ इंसान को ये अजमत देता है। अल्लाह ताला तौफीक दे। उसके बाद है अलमत नफसुम्मा अहदरत। ये बहुत ही अच्छा कुरान है। कुरान है इल्म, गुज़श्ता हफ्ते हमने बताया था इल्म या तसव्वुर है या तस्दीक है। जब तक हम कनाडा नहीं आए थे सुनते थे नियाग्रा फॉल्स, ये इल्म तसव्वुरी कहते हैं। जब फॉल्स को देखा अपनी आँखों से ये हो गया तस्दीक, हो गई आँखों से हमने देख लिया। अब उस तस्दीक के भी दर्जे हैं, वो दर्जे और हैं, लेकिन देखा हमने, देख करके यकीन कर लिया, इसको कहते हैं तस्दीक। इल्म है हमको कि जन्नत है मगर उसकी तस्दीक कब होगी? जब देखेंगे। कब देखेंगे? इंशाल्लाह। इसीलिए मोमिन जो है जन्नत में जाने का इंतज़ार नहीं करता कि वहाँ जा करके देखे, बल्कि कुरान ये कहता है अगर इल्म यकीन पैदा कर लो लतरउन्नल जहीम, जहन्नम को वहाँ नहीं देखोगे, यहाँ देखो। तो इंसान में वो खुदा ने सलाहियत दी है मोमिन में, मोमिन अगर इन पर्दों को हटा दें तो जन्नत को भी देख सकता है, जहन्नम को भी देख सकता है। जन्नत मरने के बाद इल्म हासिल कर रहा है देखने के बाद ना, अगर इल्म हासिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत्तकाथुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन। अगर इल्म यकीन तुम हासिल करो तो क्या होगा? लतराउन्ना, तुम आँखों से जहन्नम को देख सकोगे। जहाँ जहन्नम देख सकोगे वहाँ जन्नत भी देख। सलावात पढ़िए वाजिल फ़र्जों। बस टाइम जो एक मरसिया भी हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि विद इन 2 आवर्स पूरे काम पूरे ख़त्म हो जाए। एक वाक़ है ओहद में, जंग ओहद में लोग भागने लगे मदीने से, अक्सर लोग आए थे मदीने की तरफ भाग रहे थे। अनस इब्ने नज़र का वाक़ा कि वो मदीने से जा रहे थे ओहद की तरफ, चूँकि सरकार ने बुलाया था, शायद तैयारी में देर होगी, जा रहे थे तो देखा कि कुछ भागते हुए लोग आ रहे हैं जो मदीने की तरफ जा रहे हैं। पूछा क्यों भाग रहे हो? लोगों ने कहा कि सरकार शहीद हो गए। जैसे ही सुना सरकार शहीद हो गए, इसकी ज़बान से निकला अब क्या बाकी है? सरकार की शहादत के बाद हमारा जीने से क्या फ़ायदा? हमारा जीना ही क्या है? वो दुश्मन के सामने खड़ा हो गया, जंग की और ज़ख्मी हुआ और उसकी शहादत वाकई हुई। कुछ लोग हैं जो भाग रहे हैं,

लोग हैं जो करीब आ रहे हैं, ये क्या है? एक है जो जन्नत से भाग रहा है, एक जो जन्नत की तरफ जा रहा है। तो ये जन्नत इसीलिए हुफ्फत बहिल मकार, जन्नत ऐसे ही मिलने वाली नहीं है, मुसीबतों से लिपटी हुई है, इससे लिपटी हुई है, जिसके बाद हमको वो मकाम हासिल होता है। अब करबला के मौके पर भी रिवायतों में है कि जब मुस्लिम इब्न औसजा जख्मों से चूर गिरे हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर सराने गए हैं, हबीब ने कहा कि ये क्या बात हुई कि आप हमसे पहले जन्नत चले गए? उस वक्त मुस्लिम इब्न औसजा ने मौला इमाम हुसैन की तरफ अपने चेहरे को पलटा के कहा, अस्सलाम अलैकी या अब्दुल्लाह, मौला सलाम हो मेरा, बेफिदा का अम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे फिदा हो जाए। ज़ख्मी हैं, पूरे जिस्म पर खून बह रहा है, शहादत करीब है, मेरा माँ बाप आप पर फिदा है। यानी मुस्लिम से कह रहे हैं कि तुम जन्नत की बात कर रहे हो, जन्नत तुम्हारे करीब है। कौन है जन्नत? इसीलिए मौला ने दुआ को मैल परवरदिगारा तेरे औलिया से दूर हो जाना जहन्नम है, तेरे औलिया से करीब होना जन्नत है। शब आशर इमाम हुसैन ने जब पीछे ख़याम के पीछे एक थैली में कुछ चीज़ें जमा करने लगे, किसी के आहट महसूस की, उन्होंने कहा कौन? कहा मौला मैं खिदमत में हूँ। इसलिए मालूम था कि कोई भी हमला कर सकता है, तनहा इमाम हुसैन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मतलब वहाँ हिलाल तुम आ गए, हिलाल इब्न रौफ़ है, कहा मौला मैं आपको तनहा नहीं छोड़ सकता। मौला ने हाथ थामा और आगे बढ़े, दो टीले और पीछे से चांद निकलने वाला था। 10 मुहर्रम के माने, शबे आशुर के माने, मालूम है कि चांद जो है गुरूब के बाद थोड़ी ही देर में निकलने लगता है, रोशनी निकल रही थी। दो ये टीले थे, इमाम ने कहा इसके पीछे चले जाओ, मैं बैअत को विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछूँगा भी नहीं, निकल जाओ। इसलिए कि ये जो जमा हुए हैं ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, कोई और इनको ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ। कदमों पे गिर कर के जो जुमला कहा है, कहा मौला मैं जन्नत में आने के बाद जहन्नम में चले जाऊँ, तो ये वो वफादारी है करबला वालों ने बताई है, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने आखिरी निदा में याद किया है नाम ले लेकर के। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि आलमिन नासरिन यंसुरना, हलमिन मुगीथिन युगीथना, ये नहीं फरमाया, सिर्फ ये हाँ नाम लिया, नाम ले लके पुकारा। तो क्या मकाम है उन हस्तियों का जिनको इमाम हुसैन भुला नहीं सके हैं, आखिरी लम्हात में भी इमाम ने याद किया है। क्या कहने उसके जिसने अपने दोस्त को वसीयत की इमाम की हिफाजत के लिए, और एक जुमला मेरे हमारे रोने के लिए काफ़ी है, जब इमाम जा रहे हैं इमाम के सामने कोई नहीं था जिसको वसीयत किया जाए, किसकी हिफाजत की जाए, शेमर जाल सुन आला सदर, कोई और नहीं था, और बीबियों तक इत्तला देने वाला भी कोई नहीं था। बस इतना ही मालूम है कुछ ही देर में सिया आंधियां चली और आवाज़ गूंजी, कद कुतिल हुसैन, हुसैन शहीद हो गए। उस वक्त इमाम हुसैन की बहन ने जब पर्दा हटाया है तो किसी बहन को खुदा ये मंजर ना दिखाए, नैज़े पर हुसैन का सर है। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल हलत बिफनाइक व अनाखत बिरहलिक अलैकुम इन्नस सलाम अबदन मा वकीत वकील लैल व नहार।